0: pela pior. Asa se na ni ana miti e te ti e hnya la hu. Muti e kati e aje koko. Ye kha palo sa se na nye muti ye kati ye ana khe shiku sa de tu ne khu go ne khu go pha me ma me mi ka tu kha ni sago patma nego pache mache toma ke amahu medi e zato jile zago pache mache topi e muta e te haku sago pache mache hale lata i desu wa ये न तो जिगे पके मके मके तोम ए ते पे थु खानी ने जो पाछे माछे गे तोमा के लकु जफा ए न तो गमा पा मे फे जतु गमा ता हो
1: 这次才进来的，他都是俩穿跟路一样的，这可以。
2: 这何必得干那的木块来，都学可嘛学那。谁走不得没那谁走不可没妈妈对母子可开口来你也别有些感激说明个家着急母辈说个说开着自着妈子得了马子马哥的白狗我哥哥哥呀哥呀那都不去去不去可打给他们如果你咋啥咋的哥哥不拉过来说个地接去偷去为马黑阿来路也哈巴路啊狗怕起可咋可到一切人这个说没马下来你和咋去这个狗来妈妈个婆大婆妈的这个啊那不提的卡的咱们啊那胡来打来来你特米姐一胡来啊那那就没啊胡卡巴哦哈
1: 哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

0: ma shi na nu che bi qu le a li e pa che ma che ke me a na a su ma hi qu o pa che ma che hu ta a vi ma a hi qu o sam wa za kho khe tu me a li e nu a ma shi na mo qu le a she pe m to to ka pa o Atunga shepu emoto khele lepe bima ahi alia ho.
1: Ite te kainita.
0: Shepu emoto khele lepe deshi ama po shika ho. Meshe neno zote ama e pabeku ho. हम मुख है फसि जमा खुशि एकु नशे ने नो थके दे अथु थु दे नशे ने नो पाले गाही फै छिमी जमा को ब्याची खुशे जमा को शिशे जमा को थाने मी आना को नेशिया ने न कखे आना ए चोगे कहा हाथों ए चोले ए नेशे ए ने नो पालो माहो लो ए ए गुफ़े आमा लो ले चिनी ए जो माकु थोशे जो पो भी अचे शिचे जो पो भी अचे हाथ ए चुले जो के ने शे ने नो पालो ना हूँ

पाख न पता मथा ए हे उका मामाजुवाहिकाली उहां पाखु माखु इताबे ओले पाखो अना